वचा क्षरसर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते. सो हियर ही सेज इमौ लोके इन दिस वर्ल्ड द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च. देर आर टू पुरुषास हु आर देर इन दिस वर्ल्ड. वॉट आर दे? क्षर द पेरिशबल, अक्षर द इम्पेरिशबल. सो वॉट इज क्षर? क्षर सर्वाणि भूतानि, ऑल बीइंग्स दट आर देर, दे आर द पेरिशबल वन. एंड द कूटस्थ अक्षर उच्यते, एंड द कूटस्थ इज कॉल्ड द इम्पेरिशबल. सो द लॉर्ड इज एक्सप्लेनिंग टू अर्जुन हियर दैट वॉट एग्जैक्टली इज द नेचर ऑफ दिस कॉन्शियसनेस एंड वॉट इज इट्स ट्रांसेंडेंस एंड वॉट इज इट्स इमेनेंस एज वेल. सो हियर ही सेज इन द वर्ल्ड दैट यू सी अराउंड देर आर टू टाइप्स ऑफ पुरुषस. एक्चुअली दीज आर द टू लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एज वेल. सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द क्षर. क्षर द वर्ड मीन्स दैट विच पेरिशस, सो द पेरिशबल. सो वॉट इज दिस क्षर? ऑल द बीइंग्स आर द क्षर पुरुष, दे आर द पेरिशबल वन्स. दैट इज वॉट ही सेज. एंड देन वॉट इज अक्षर? अक्षर इज दैट consciousness itself. So he refers to consciousness here as kutastha. So what is purusha? As we all know, purnatvat purushaha, the one who is the infinite, the whole, the complete, that unchanging supreme truth, that is called purusha. And also purushete iti purushaha, that same consciousness which expresses through one equipment, which all the beings are the kshara purusha, they are the perishable ones. That is what he says. And then what is akshara?

या बारी खुदा खुदा वंदे आलम रा हमें अंजुमन रा बा फरजंदान हजार साल देर बेदार शाद बेदार तंदुरुस्त बेदार ऐ दुन बेदार बरस

0: Sri Sai Ram, offering our humble pranams at the divine lotus feet. It is Swami's grace that on the occasion of the 80th year of the advent of the avatar, we, the Balvikas children of Uttar Pradesh, have been given the opportunity to present before our beloved Bhagwan the tenets of the religion of Islam. The Arabic word Islam means the submission or surrender of one's will to the true God Allah. Anyone who does so is called a Muslim. The word also implies peace, which is the natural consequence of total submission to the will of Allah. Islam proclaims that Allah is one and that Prophet Muhammad, peace be upon him, is his prophet. He was sent by Allah to Arabia in the 7th century to spread his teachings. Respected elders, dear brothers and sisters, permit me to take you to Lucknow, my hometown, which is the old city of Nawabs on the banks of the river Gomti. Here, in a typical Muslim household, the children of the family are being introduced to the basic rituals of Islam by their elders.
1: Islam sabhi insani makhlooq ke liye ek sachcha rasta hai. Ye mazhab sari duniya ko mohabbat aur bhai chare ka paigham deta hai. Oonch neech chote bade, amir gareeb aur nasl zaat ki deewaron ko tod kar sabko barabari ka darja deta hai, sabko pyar se gale lagata hai. Islam mazhab ki inhi khoobsurat aur sachchi baaton ko aaj hum aapke samne Lucknow ke ek chote se Muslim gharane ke zariye pesh karne ja rahe hain.
2: अरे भाई ये क्या हो रहा है?
3: देखिए दादाजान, करीम भाई मेरा पेन नहीं दे रहा.
2: क्यों भाई करीम मियां, आप रहीम मियां का पेन वापस क्यों नहीं दे रहे हैं?
4: ये पेन मेरा है दादाजान.
3: ये झूठ बोले हैं दादाजान.
2: अरे तौबा तौबा, आप झूठ बोल रहे हैं. आप एक सच्चे मुसलमान हैं और सच्चा मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता. मालूम है इस्लाम में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है.
4: जी
2: चलिए रहीम मियां का पेन वापस कीजिए.
4: ये लो.
2: शाबाश, आइए यहां मेरे पास बैठिए. आज हम आप लोगों को इस्लाम की कुछ बुनियादी बातों के बारे में बताते हैं ताकि आप लोग कभी भी कोई भी गलती ना करें.
3: हाँ हाँ दादाजान, जरूर बताइए.
2: देखिए बेटा, इस्लाम मजहब के 5 खास रुकन हैं. इनकी मजबूती ही इस्लाम को मजबूत बनाती है.
3: वाह क्या
2: कहे
3: दादाजान.
2: पहला है तौहीद, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह. इसके माने हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं. इस पर पुख्ता यकीन रखना हर मुसलमान का फर्ज है.
4: दूसरा क्या है दादाजान?
2: दूसरा रुकन है नमाज. इस्लाम की पुख्तगी और मजबूती नमाज से ही होती है.
5: अस्सलाम
2: वालेकुम अब्बू जान. वालेकुम
4: अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान.
5: जीते रहिए जीते रहिए. भाई यहाँ क्या हो रहा है?
2: आपके बच्चों को इस्लाम की बुनियादी बातें बता रहा हूँ.
5: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. भाई आप लोगों ने कुछ सीखा?
4: जी अब्बू, कोशिश कर रहे हैं.
5: बहुत खूब भाई, बहुत खूब.
3: हाँ दादाजान, इस्लाम का तीसरा रुकन क्या है?
2: तीसरा रुकन है रोजा, यानी रमजान के महीने में 30 दिन रोजे रखना.
4: और चौथा दादाजान?
2: चौथा रुकन है ज़कात.
3: ज़कात का क्या मतलब?
5: ज़कात का मतलब ये होता है बेटा कि हर मुसलमान अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों के बीच बांट दे, जिससे अमीर और गरीब की खाई कम हो जाए.
2: और इस्लाम का 5वां और अहम रुकन है हज.
4: हज में क्या होता है दादाजान?
2: बेटे हज के दौरान सारी दुनिया के मुसलमान मक्के में इकट्ठा होकर काबे शरीफ का तवाफ करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करके एक सच्चे मुसलमान बनने की दुआ करते हैं.
3: हम लोग हज करने कब चलेंगे?
5: ہم لوگ انشاءاللہ اسی سال حج کرنے چلیں گے.
3: ارے واہ, تب تو ہم لوگ بھی حاجی ہو جائیں گے.
4: اچھا دادا جان, قرآن شریف میں کیا کیا لکھا ہوا ہے؟
6: بھائی قرآن شریف کے بارے میں آپ لوگوں کو آپ کی دادی جان بتائیں گی. میں تو اس وقت تھک گیا ہوں, تھوڑا آرام کروں گا.
5: چلیے ہم آپ لوگوں کو امی جان کے پاس لے چلتے ہیں.
4: ہاں ہاں چلیے.
0: Having understood the five basic tenets of Islam, the children go to their grandmother. Dadi Jaan patiently explains to them the teachings of love and brotherhood in the Holy Quran.

0: उठो बेटा, रहीम करीम।
1: अरे बेटा उठ जाओ जल्दी से, सरी का वक्त हो गया है।
0: उठो बेटा, वक्त बहुत तंग है, उठ जाओ।
2: उठ तो गए हैं अम्मी।
0: हाँ शाबाश,
3: वक्त हो गया।
2: अम्मी जान, सरी खाने के बाद दिन भर कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा?
0: नहीं बेटा, रोजे में पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते पीते, शाम को अफ्तार के वक्त ही रोजा खोलकर खाया पिया जाता है।
2: रोजे क्यों रखे जाते हैं दादी जान?
4: बेटा, इसी महीने में हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का पैगाम दुनिया के सामने पेश किया। इसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ, इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान साल में एक महीने रोजे रखते हैं और अपने रब की खुशनुदी हासिल करते हैं।
5: और बेटे, रोजा रखने से इंसान की सेहत भी ठीक हो जाती है, दिल और दिमाग से बुरे ख्याल दूर हो जाते हैं और रूह साफ और पाक हो जाती है।
6: हजरत, सहरी का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं।
0: बेटा जल्दी करिए, देखिए सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी करिए बेटा।
7: बेटा जल्दी करिए,
0: 2 मिनट बचे हैं। पानी पीजिए जल्दी से, पानी पीजिए जल्दी से, फटाफट।
5: हाँ भाई, आप लोगों ने सहरी कर ली
7: जी?
5: चलिए अब हम लोग रोजे की नियत करते हैं
0: जी।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
8: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
5: बिस्सौमिर्रदिन, नवायतो लिल्लाह ताला,
8: लिल्लाह ताला,
5: मिन शहर रमजान,
8: मिन शहर रमजान।
5: अब हम लोगों की रोजे की नियत हो गई, अब हम लोग चलते हैं फजर की नमाज पढ़ने
7: जी, जी। चलिए।
9: द न्यू मून इज साइटेड, द फेस्टिवल ऑफ ईद सिग्निफाइज द एंड ऑफ द मंथ ऑफ प्रेयर्स एंड फास्टिंग। Muslims all over the world greet each other with love and joy. It is time for feasting and celebration.
2: Mubarak ho, Mubarak ho, Eid ka chand ho gaya, Eid ka chand ho gaya.
1: Mubarak ho, Mubarak ho. Ami jaan, aapko bahut bahut mubarak, bahut bahut mubarak ho.
7: Ami jaan, chand mubarak ho.
1: Mubarak ho beta.
7: Abu jaan, aapko bhi mubarak ho.
10: Mubarak ho, Mubarak ho
9: bhai. Abu jaan, our father, keeps his word. The entire family travels to the holy city of Mecca in Saudi Arabia for Hajj. Islam proclaims that every pious Muslim who has the means to do so must make a pilgrimage to the holy city of Mecca at least once in his lifetime.
11: Islam ka panchwa khas rukn hai Hajj. Har sahib-e haisiyat musalman par Hajj farz hai. हज के लिए पूरी दुनिया से मुसलमान मक्का में जमा होते हैं। इस साल रहीम और करीम के वालिद वालिदा, दादा जान और दादी जान भी हज करने मक्के मुअज्जमा तशरीफ लाए हैं। हज के दौरान सफेद कपड़े बगैर सिले हुए पहने जाते हैं, जिन्हें एहराम कहते हैं, जो हर हाजी को पहनना लाजमी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, गोरा हो या काला, छोटा हो या बड़ा। इस लिबास में सब एक से दिखते हैं। ऊंच नीच की सारी दीवारें यहाँ खत्म हो जाती हैं। हज के दौरान काबा शरीफ का तवाफ किया जाता है।
12: लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
13: लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
12: इन्नल हम्द।
11: मुकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज अदा की जाती है।
12: जमजम
11: का पानी पिया जाता है।
12: شريك لك لبيك
13: لبيك لا شريك لك لبيك
12: إن الحمد
13: إن الحمد
12: والنعمة
13: والنعمة
11: لك صفا اور مروا کی پہاڑیوں کی سعی کی جاتی ہے منا کے میدان جاتے ہیں عرفات کی پہاڑی پر دعا مانگتے ہیں اور پھر منا واپس آ کر شیطان کو کنکڑی مارتے ہیں
12: ان الحمد
13: ان الحمد
12: والنعمت
13: والنعمت
12: لك والملك
13: لك والملك
12: لا شريك لك
11: پھر قربانی کر کے سر منڈواتے ہیں
12: اللهم لبيك
13: لبيك اللهم لبيك
12: لبيك لا شريك لك
13: لبيك لا شريك لك لبيك.
11: اس طرح حج مکمل ہوتا ہے اور ایک مسلمان گناہوں سے پاک ہو کر ایمان کی صورت میں واپس اپنے اپنے ملک پہنچتا ہے. یہی ہے اسلام مذہب جس کے نور نے آج سے 1500 سال پہلے تاریخ دنیا کو منور کیا تھا, اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی یہ اپنی روشنی سے سارے عالم کو جگمگاتا رہے گا.

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आशा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरयो ना एक काजा भजियो नारग पत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाय लिखाया, भगत नार दीर दना आई काश कूश तंदीना, राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी, कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा।

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुखिया बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा समुंद बिलोवन कौ माटा, ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना करस पतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेतस चेरी। तू जम बपरी है हेरी प्रभ करन कराम नहारी, क्या चेरी हाथ बिचारी सोई सोई जागी जितलाई तितलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई। सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया, जह बाज ना जिया जाई जो मिले ता कालिया गाई। सद जीवन भलो कहां ही मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया, पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जनदाता पाया सो दिया न जाई खाया, छोड़िया जाए न मुका और न पहजाना चूका। जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने, कबीर है सो तन पाया हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िया क्या गुनिया क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्ता गोचर लहिए, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजै ना पतीजै तो क्या कीजै। हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बिलोव सपानी। काया मांजस कौन गुना, जो कट पीतर है मलना रहाओ। लौकी अड़सर तीर्थ नाई कौरा पंतऊ ना जाई, कह कबीर बिचारी पव सागर तार मुरारी। सोरठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु प्रपंच कर पर धन लियावै सुधारा बयान लुटावै। मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंतन बेरा तेरे जी पहली जय रहाओ। छिन छिन तन छीजै जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा। संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ। गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिए दरवाजे बाजी आले अनहद बाजे। कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया। राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै। हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ। दोए शेर मांगो चूना पाओ की ओ संग लूना, अध शेर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जवाले। खाट मांग

हम बाती, जो तुम तीर्थ तो हम जाती, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोरे अवर संग तोरी, जह जह जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकरे और न देवा, तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा, जल की पीत पवन का थंबा, रगत बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कम उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा, बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होएगो।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ न जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लो गंठ गंठ खरा बिगूचा, होमन गंठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पेखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

माथे पीर शरीर जलन है, करक करे जे माही, ऐसी बेदन उपज खरी पई, वा काय औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, एहो औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन पीखन, पावो मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कह ना जाई, जैसे गूंगे की मिठाई, रहाओ रसना रमत, सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई, कहो पीखन दोए नैन संतोखे, जै देखा तै सोई। तनासरी महला पहला, कर पहला चौपदे, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सब।

पूरे गुरु की साची बाणी, सुख मन अंतर सहि समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रवे को सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया। तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जल अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोए, तिस दा आनंद होवै दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम होमै मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाही कदे सोग, आप मुक्त अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, पिन सतगुर सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तना श्री महला तीजा, सदा तन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतिपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास।

0: जो हर सेवै तिन बल जाओ, तिन हृदय साचो सच्चा मुख नाओ। साचो सा संभाल्यो दुख जाए, सचै शब्द वसै मन आए। गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ। कूड़ को सत तृष्णा यगन बुझाए, अंतर सांत सहे सुख पाए। गुर कै पाणे चलै ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए। ना शब्द बूझै ना जाने बाणी, मन मुख अंधे दुख विहानी। सतगुर भेटे ता सुख पाए, हमें विचों ठाक रहाए। किसनों कहिए दाता एक सोए, कृपा करे शब्द मिलावा होए। मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साचा पावा। तनासरी महला तीजा, मन मरे तात मर जाए। बिन मन मुए कैसे हर पाए, एहो मन मरे दारू जाने कोए। मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसना बक्से हर दे वडियाई। गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ, गुरमुख करनी कार कमावै। ता इस मन की सोजी पावै, मन मैं मत मैंगल मिकदारा। गुर अंक समार जीवा लनहारा, मन असाधु साध जन कोई। अचर चरै ता निर्मल होई, गुरमुखे हो मन लिया सवार। हम मैं विचों तजै विकार, जो तुर रखिया नो मेल मिलाए। कदे न विछड़े शब्द समाए, अपनी कला आपे प्रभ जाने। नानक गुरमुख नाम पछाणे, तनासरी महला तीजा। काचा तन संचै मूर्ख गावार, मनमुख पूले अंध गवार। बिखिया कै तानु सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए। साचा तन गुरमति पाए, काचा तन फुनयावै जाए रहाओ। मनमुख पूले समरै गवार, पवजल डूबे ना उरवार ना पार। सतगुर पेटे पूरै भाग, साचरते अहिंस बैराग। चहो युग में अमृत साची बाणी, पूरै भाग हर नाम समाणी। सिद्ध साधक तरसै सब लोए, पूरै भाग प्राप्त होए। सबके साचा साचा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाणै कोए। सच साचा सच आप दृढ़ाए, नानक आपे वेखै आपे सच लाए। तनासरी महला तीजा, नावै की कीमत मित कही ना जाए। से जन तन जिन एक नाम लिवलाए, गुरमत साची साचा विचार। आपे बक्से दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए। कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूर्ख मूर्ख मन माहे, हम मैं वे सबकार कमाहे। गुर प्रसादी हम मैं जाए, आपे बक्से ले मिलाए। बिखिया का तन बहुत अभमान, हंकार डूबे ना पावे मान। आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत साला ही सच सोई। आपे साजे करता सोए, तिस बिंदु जाय अवर ना कोए। जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राज तनासरी महला तीजा, कर चौथा एको अंकार। सतगुर प्रसाद हम पीख कपे खारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन कहो, सदा रहो रंग राता। हम बलिहारे जाऊं साचे तेरे नाम विटाऊं, करण कारण सबना का एको, अवर ना दूजा कोई रहाओ। बहुते फेर पए किरपन कहो, अब किश कृपा कीजै। हो दयाल दर्शन देहो अपना, आपी ऐसी बस करी जै। पंडित नानक परम पट खूले, गुर प्रसादी जानिया। साची लिव लागी है पीतर, सतगुर स्यो मन मानिया। तनासरी महला चौथा, कर पहला चौपदे एको अंकार। सतगुर प्रसाद जो हर सेवै संत भगत तिनके सब पाप निवारी। हामी उपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कह न सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत। कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ, जन्म जन्म के लागे विख मोरचा। लग संगत साध सवारी, ज्यों कंचर बै संतर तायो, मल काटी करते उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हरे उर तारी। हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हों मैं मारी। हर हर अगमय अगाध बोध, अपरंपर पुरख्या पारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जपयो, तिनका दुख परम पौ भागी। अपनी सेवा आप कराई, गुरमति अंतर जागी। हर कह नाम रता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिव लागी रहाओ, संत जना की जात हर स्वामी। तुम ठाकर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी। हम तैसे बुलग बुलागी, क्या हम किरम नानक कीरे। तुम वड पुरख वडागी, तुमरी गत मित कह ना सकै प्रभ। हम क्यों कर मिलया पागी, हर प्रभ स्वामी कृपा तारो। हम हर हर सेवा लागी, नानक दास संदास करो प्रभ। हम हर कथा कथागी, तनासरी महला चौथा। हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता, हम तिस कह सतकुरबानी। हर के संत सुनो जसकानी, हर हर कथा सुनो एक निमुख पल। सब किल विख पाप लह जानी रहाओ, ऐसा संत साध जिन पाया। ते वड पुरख वडानी, तिनकी धूर मंगै प्रभ स्वामी। हम हर लोच लुचानी, हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी। जिन जपियो से तृप्तानी, हर हर अमृत पी तृप्ता से। सब लाथी पूख पुखानी, जिनके वडे भाग वड उच्चे। तिन हर जपियो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी। जन नानक दा दसानी, तनासरी महला चौथा। हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चाल है गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावै आपन पाली। गुर सखमी चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई पल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ, हर के संत सुनो जन पाई। गुर सेवो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ। मत जानो वाज के काली, हर के संत जपो हर जपना। हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया से हर होए। हर मिलया केल के लाली, हर हर जपन जप लोच लुचानी। हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो। हम साध जना पगराली।
1: यू आर ट्यून्ड टू रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
2: Now on Radio Sai, we have a selection of Western classical music.